नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आगे है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा, धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी।

0: मैं नहीं खाऊंगा, लूट का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
2: पेश है शाही पकवान,
1: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
2: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
3: कुछ करिए मंत्री जी की।
4: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोई से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोई।
5: अरे मंत्री चमकी, आप
4: बताओ रसोई, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
5: शाही पकवान और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, गोभी के, गाजर के, लूसी लाल टमाटर के।
4: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
5: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
4: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी?

0: रही है शाही पकवान लाओ।
1: ये लीजिए महाराज।
0: वाह, आज तो हमारी शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोई।
1: जी महाराज।
0: ये मेरा शाही पकवान नहीं है,
2: तुमने नया पकवान बनाया।
1: जी महाराज।
0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
3: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
4: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
0: भाई वाह,
5: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
0: राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
4: महाराज घूमने की जय हो, बंदी जमती की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, बुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग।

0: सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सब

0: कटी हुई अंगूरी।
1: देखा कितने वधिया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। बी वाह, अब मैं तैयार हूँ चिमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
0: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
1: तैयार।
0: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गुगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
1: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
0: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
1: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है।
2: समझ गया, ये है गाजर।
0: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
2: तो हो जाओ तैयार।

0: रहोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
1: रुको रुको सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ।

0: आवाज, चमकी, मैं बताऊं?
1: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो।
2: क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला?
1: एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी, अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बढ़िया,
0: मजा आया ना? अब यार ये बताओ, इसको छेड़ो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी, क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
2: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
4: अब्दुल रहमान।
2: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या?

0: बेहद जरूरी है।
1: ओ, और आपके गाँव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां होती हैं?
0: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
1: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
2: मेरा नाम शांति है।
1: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
2: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
1: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
2: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
1: अरे, मेरे गोदाम के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुद्धि करने पूछती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है?
3: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
1: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
3: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसे का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के बच्चों को देती
1: है। अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
4: पालक।
1: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
4: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
1: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
5: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
1: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
3: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूँ 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए मिनको निकाल के रख देती हूँ, और 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को खिलाते हैं।
1: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय
3: बाय।

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो इसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है। जैसे तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: हाँ हाँ जी, तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए, और दूसरी तरह जैसे पालक है तो पालक भी नहीं खा रहे तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर बना के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर ले, ज्यादातर बच्चे आलू भी पसंद करते हैं इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना तो वो वैसे भी बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हो या छोटे बच्चे हो तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए कि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुने दे बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करत हेंगे। हम रहेंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हां श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जिन्हें जाना दें कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और कहा कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है वो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है को और उतर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा दे दे। एक कहते हैं ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उन जगह पर पहुंच गया और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। तो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चले थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है वो उनके बारे में भी अपन और एक कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। कह के पहुंचने में इतना टाइम भी लगे होते हैं, ठीक है। तो चलो अपन सैर करके चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।

0: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल वाया करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़े और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ही लोक लोहावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
1: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहां पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम?
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है, यहाँ का झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई है, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ है, माँ सती के अंग है, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु रोग में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है, उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकृतिक रूप है।

0: उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यह एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
1: बिल्कुल,
0: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र है, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती है। यहाँ सामने खड़ा सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अगनासे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति है वो सब दक्षिणावर्ती है, सब दक्षिणावर्ती है। और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी आते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी जैसे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की समय हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप

0: हमसे जुड़े
1: और पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो आते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
0: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
1: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावड़ा रहे।
0: आप उन्हें कहीं के हो?
2: यही के।
0: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं देवी जी के, उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से भरपूर रहे। हमें किसी का ना देना ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से करते हैं।
0: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखे, धर्म में आस्था बनाए रखे। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी सबको।
0: रामचंद्र जी का मंदिर है,
2: हाँ, वो अच्छा। खंगा रूंगा है। और वो जो है किराए ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है उसमें, रामचंद्र जी हम देखे और बहुत बड़ा है मंदिर।
0: अच्छा,
2: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी जगह है।
0: अच्छा है,
2: बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुंवर के राजन के कुंवर आओ और एक हफ्ते बाणिया के लड़का।
0: अच्छा, मतलब एक हफ्ते राजा के कुंवर,
1: एक हफ्ते बाणिया के।
0: हाँ जी, दो जने हो गए। हाँ,
1: 50,000 उनकी दोस्ती।
0: हाँ,
1: उनके दोस्ती वर्ष में काम काज पढ़ लिखते जो भी आ गए सुबह खुद चले जा रहे
0: हैं।
1: दो किलो शिकार भी अपना घोरो मस्के भी अपना घोरो मस्के।
0: हाँ,
1: अब जब बन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, जा शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बल पीत नहीं फिर कर गया।
0: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले वो निकल गए बीवन। बोले अब बीवन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
0: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं तो पतो के हमें ससुराल देखे थे। अब राजन को बस बीवन हटी अपनी बन में कितने सकत बीवन।
0: अच्छा,
1: से बार बार बनवाए गाड़ी फाड़ी बनवाई बाढ़ छटवाए कल कबजा का छटे कल ससुराल हो जाए।
0: अच्छा,
1: अब जब नाल हो गए से नाल खोज तो गाँव भर के तो फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या से
0: जा सही के
1: नाल को सब पतो है। सो नाल कहते राजन कितनी लड़की ससुराल को पतो
0: ऐसा।
1: सो बस अब बीवन के बाल बन गए और राजन के बादशाह के बनने। सो बादशाह के बाल बने। सो बादशाह बोले बोले कर ले का बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीवन तो जा रहा ससुराल है हम किसे चले जा रहे। अरे बोली कर ले राजन के राजा आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे का है नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ, तो बस बोली कर ले थी सब भी तीन दिन हो गए।
0: अच्छा,
1: तो नाव हो गए बादशाह हो गए बीवन हो गए तीन दिन की दोस्ती हो गई। बस चलो ससुराल के जाना। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुजा खुदवाई थी सुबह में बीजक लगवाए थे। तो जब उनकी ससुराल को गल गई तो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
0: अच्छा,
1: गल में संपत्ति लगी उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म भेजे तो चलो मिलन किया पानी का पानी पीने के लाने सुबह ने बीजक बांचो।
0: अच्छा,
1: बीजक बांचो वाले से उन्हें गली अलग अलग। बीवन है बदमाश। बीवन बदमाश हो।
0: अच्छा,
1: तो बीवन में का करो किस्ता के पानी पी के बावजूद में वह बीजक को भरा जाओ
0: ले।
1: अगर हमारा गाय जब बीजक को राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बाचे ले

0: उसे कह हमारे ससुराल चलेंगी
1: चलेंगे
0: तीन
1: दिन
0: हाँ जाकर दूल्हन बदमाशी को लगवा सुबह सब राजा पानी पी लेगा तो राजा ने पानी पिए जो तमाम बाउली में ही सुबह में बीजक मंदिर और लगवा रहे तो राजा ने अपने खोबन की उलीच उलीच के भाई
1: बाँचो
0: बाँचो वाचो गाने तो जहाँ पूरे लिखो तो जा राजा ने कितने रखो रास्ता गई और जब बीजन कितने रखो रास्ता गई दोनों बने तो वो लेकर लेकर वो बीजन बोले कहीं बाबू के राजा बोले तुम बहुत बदमाश हो बोले कल्ला पुरखन को बुझक तुम्हें मिटा दिया है आज कल के हम अपनी ससुराल देते हैं बोले कल्ला उनकी शर्त लग गई बोले कल्ला जो पहले आगे विदा करा थे वो दिल की बाउरी पे ठहरे क्या जिन किटी को भी जाए
1: सही सही
0: बस बेहती सब भी अपनी ससुराल चले गए अब भी अपनी ससुराल कल्ला और जी सताई बच्चा बोले कल्ला जी राजन के संगे चले
1: सही है
0: अरे हमारे वर्ग के संगे का चले हम सोच आदि और राजन के संगे जो हेल्पर चलते हैं कल्ले जी सो राजन की कीमत और सुदैव कद्दूई ने जा रहे भी अपनी ससुराल चले गए अब शाम राजन के कुमार जा रहे थे बन कबीली में पहुंची तो अब राजन के कुमार को लगी प्यास
1: अच्छा
0: बोले कल्ले सुबह कब बोले कल्ले कर ये राजन के वजह कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सादा शरीर से प्राण निकल जा रहा है इसे पानी को देखो बोले कर राजन के वजह बारह कोस में नहीं पानी ना मां पानी अपन बल नहीं है बोले कल्ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गाते बोले कल्ले हो महाराज शुद्ध का खबर पे चली जिसे नीचे जाना हो सब देखा है नीचे जाना हो रोक चली सो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा गई तो नाव ने सोची तो बिल पानी से बगली गई कि नहीं पानी में चल होगा
1: बिल्कुल
0: बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा गई तो बिल पानी की बगली नहीं देती है पानी जमी हो गए थे बोले कल चल चल सुबह लोटा घड़ी लिया थी चलिए सुबह खुद जब मैं गया पाई खुली से देख रही थी हाँ तो बाहर आराम से नहीं आराम से मैं मदद चली गई उत्तर काकुस का हाथों को गोंदर लड़की राजा ने खून दिया थी वो मज्जा में स्नान कर रही थी
1: अच्छा
0: वो मज्जा में स्नान कर रही थी सुताई वक्ता ने कहा करो कि झटपट पानी पी के और मचो सके भर के और पहुंच गए बोले कल पैदा का बोले कल के ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ऐसे ठीक है तुम लिया बोले कल भाग जाके ना पूछो पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पीने जब जब बात पूछ लिया बात हो क्या क्यों पानी में मचो लिया होता ऐसा जल्दी हो थे कौन कि मचो सके भर के आ गया बोले कल्ला महाराज कल्ला तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर गई है तो उसके साथ हमारा मेरे चाचा के दिल परिश्रम के साथ मचो सचो भर लिया है तो हम खुद प्यास में मरी जा रहे हैं अरे बोले कल बगरा रही पानी वो पानी बगरा के दो तालाब पे पहुंच गए तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद में वो कल्ला सुबह का बोले कल्ला कहिए राजन के राजा बोले कल्ले उसको लड़की को पूछने के जिंदे जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो कर पंचाय को तो मुंह कर ताला पाए बोले कल कहो उन्हें कर

0: अच्छा या नाग पक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जा
0: राजन ने कही जा
1: राजन ने कही जा बात
0: हां
1: सुन फिर कही नहीं हां अब्बा बोले जल में ठाणी जा
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: हां लड़की को नहा रही
1: जल नहा रही अब्बा बोले
0: हां

0: सिंचाई आपका बोले कल राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल देना।
1: सही है,
0: अभी से बोल देना बोलो कब गवर्ना गए
1: बताओ। सही सही
0: बोले कल नहीं अरे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोले
1: हाँ
0: भूलो।

0: आपने अगर ये बता दे तो कल जो द्वार पहुंच जाए अब तो जो हाथ हाथ में अगर बता दिए अब जल के भीतर अब उनको समझ में नहीं आए जल के जाए उनको बदल चाहिए है कैसे हाँ मैं कहना मायक है तो पूछ कर इंसान है कई की अब यह समझता है
1: तो मैं कहीं बाली
0: मां संभव बोली

0: या वहां मिल जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ वन मिली नहीं बताई
1: हाँ
0: न वन वजन काड़ो जब मनी मिली बा।
1: अच्छा
0: अपने पास आ गई चाहिए
1: हाँ
0: बस सावन है किसी गली से पूछेगी गली पूछ के उन्होंने घोड़ो बढ़ाओ तो गाँव के लाने तैयार हो गए। अब बानी सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे रात तो गड़बड़ हो जाएगा ने जल्दी कर दी सत्रो तो सफर खोल के तो बाप ने जल चलिए जो ये हथी से जाते भवन दुआले छोटे लड़का को देखो तो ससुरा
1: तो
0: भवन दुआले अरे तो उनने अब पहुंची गए क्योंकि घरों से भी घोड़ाओं को बन रहा

0: बिल्कुल
1: क्या तुम भागवे नीचे कमेला नंदी नीचे करो बातन में बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आगे चाला
0: अब लुभग आ गए तो
1: लुभगवा उनमें भाभी से कही चलो भाभी आज रात तक तुम न बनाओ आज हम बने
2: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुन में घरेला उतार के पत्नी नाश्ता बना दी के लाने तुम्हारे के तैयारी कही गुण दो मिनट में कही चला
2: अच्छा
1: गुली कर लो देखो अपन फोन कंगा गोल गोल बनाए थी
2: बिल्कुल
1: हम भोजन में करने हम भोजन में करने की भोजन बना के अज्ञा जो गई भोजन के लाना तो दोनों जन भोजन को गए भोजन को गए साफ सुन चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने

0: 89 सरकार के मोय कछु अब भूख खुलवाओ के जई हो गया।
1: हां सही कह रहे
0: जब बात
1: आ गई के उठे
0: जई हो
1: तो जई
0: जब बात बब्बा ने बात खोली छे बोल समझ ले। हां जो ने मां काकी मां जी सरकार के हां बस सीता जा काम में झटपट जो कछु राजन के बीच में बात बांध दी।
1: हां
0: अब बात नहीं बांध दी
1: तो
0: बस काकी मां जी को कहीं चले लोग बात कर ले काहे काहे आ बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाग मैंने अपनी काकी धो वो आपकी धो तो फिर नहीं आया।
1: हाँ जैसे टाइम लगता है
0: दस रुपये बोले कल सुन लो कल सुता ना उनको है वो अपन घूर कस कर तक जा रही है इस पापन को मिलवा जा रहे
1: हैं
0: इसको मिलवा जा रहे हैं वो बस भी है तीस हो तब जा रहे हो जहाँ से तराव होंगे तो उन्हें भज्जा घोड़ो कसो सब रात में घोड़ो कसो से जरूर कल को पलेंचा बने पीटते हैं कस दो।
1: अच्छा
0: वो पलेंचा पीटते हैं कितना दिन तो होंगे आगे बारी आगे।
1: हाँ हाँ ये वजी दिए
0: ये वजी नहीं करा पीटी कसे ये सबेरे मार गए तो बस जो राजन का हाथ आप कल भी हो गए तो राजा का कल तो क्या है जो ऊपर का पलेंचा नीचे कस दिया गया। अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार कुंजों ने राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे।
1: हाँ।
0: तो बस अब अजय दसू निकल के और बस फूक कर ली तो भाभी पूरा परोस की जमीन में वो आ जाओ बड़ी

0: नहीं देखो रिश्तेदारी है
1: सही है
0: और जब तुम दिन चटकाओ तो टूटे से जब जुड़े नहीं है जुड़े से घाट पर
1: घाट पर जाए
0: घाट पर ये जाए हाँ
1: तो
0: बस भेज तू
1: नहीं गए
0: टूटे के बदल जो मैं बकर
1: उसकी ने कही जवाब हो
0: तो अब अड़ोसन में सोची तो अगर हम भोजन कराओ तो केवल गोल को संगे
1: सही है
0: गोल भर दे जाओ तो उन्होंने हटी से वैसे कच्चे पुटिया पर मोद की कोई गानास नहीं ले गए
1: हाँ फिर कमाई खो पटपाया ले
0: मैं खुद जाप उनके गाना सकी वहाँ फिर पहुँच गए मैं सत्खंड आते पहुँच गए तो अब उन्होंने सोची रानी तो अगर भोजन है तो वे भूखे
1: खाओ
0: अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली वे पहुंची तो लगा थाली वे छाजे पे चलेंगे तो बिस्किया पे होने के लिए तो वो बजे बिस्किया बजे तो उनमें बिस्किया की आवाज के सुनकर नूर बोल रही बन गई
1: पड़ोसन भी भाग गया

0: उन्हें शंख बजे से साधु जो दिखाओ बम घलवा अगर इसलिए बम घल लो
1: सही
0: नहीं जगड़ाओ तो कुछ को पूछे
1: सही है कि का हो
0: का हो
1: कते दुनिया भगत जाए सुना का जाए
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो करो सुने तो होगा हो
1: हाँ।
0: रानी राजा के पास मिल भी गई
1: नहीं
0: अब जब खुद के दिन कह रही है

0: अरे ऐसी सासों का काम किया तेरी कूखन बांधी हो जाती और वैसे सपूत जाए तो लड़की होती तो परोस मिलनी के ब्याह शादी कर देती तो
1: गलत
0: ये तो गल जाए ना सुबह पटक थाल और दो भागी है मग थाल पटक तो मैं भागी आई सुबह अब मैं बस रात को समझ जब कहाँ जाए मैं समीवर सो मैं घोरों मस्को उस चलिए सो ससुर साहब ने कही कही जी मोहन जी ऐसे नहीं चलो हम आपको स्वागत कर लो और सब बात को बाहर आओ और भोजन करो कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं ठीक है जो भी रहते हो बच दो खाना खाओ खाना खा के पत्नी असुने सजाई तो उन्हें बुदा उनकी कई वो उन्हें खाना पीना सब वो महीना भर के लाने रख दो खाकु जब जो भरे चले गई मैं साहब आप भी हती से अपने सकावे वाले हती से जैसे गाँव के बारे करी तुमने वहां बताई फिर वो भक्त छोड़ के अब खुद ही नहीं हटाई अब सिपाही हका लो खबर भी नहीं हटाई वे हका कहीं होगा सब कहीं ऐसे वर्ष चली हुई तो शाम होने से बंगला को पूरे वैसे ही चली बस गए शाम होने से बस गए बस के लिए अब वो निकल रहा सुनिश्चित कब निकल रहा का कल उन पापों को ही छोड़ना नहीं रुकता है अब बस चल रही थी बस हम वही थी से बाने दे के ठीक है तो सुपाही अक्का से दिल के सुपाही अक्का खूब ज्यादा दौड़ा मारे तो पत्नी लगाओ तो सुपाही अक्का वैसे तीन पात में लगाई एक अपन को एक राजन को एक रानी को बस बोले तो कल क्या वो ये तीन पात में कहा खुल गया बोले कल वो एक आपको एक हमको एक रानी अरे बोले कल रानी की फार का फिर बनवाए सुगानी की फार के मार फिर गए अब मैं सोच लड़की आई तो खाना खा खाना खा के पड़ी पड़ी सोई अब रानी ने सोची कि जो भगत तो हम छोड़ के हैं उसे का कर जैसे भोरे की पछाई की ये रखी ये भगत रहा बडोर भगी की तो बस छोड़ के रानी की निश्चय मान लाई बडोर तो जो भगी तो जब ये चुनते समय वहां का हम सो गए आँख खुल गए तो हमें इसे कचु किया लिया सुबह सुनना तो उसे घोरों भंसा इलाज भाई को बढ़ाओ सुबह तंग वो तनिवर दो तनिवर दो सुनने

0: यानी दृष्टि अब फल में बुझा गई हमें, हम न जई गांव के रहे न गई गांव के रहे, अब सिंहवारे के चले गए, वो अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अपने से कहा कि नस्खू दूध घर वाले और बाने हकाओ हकाओ की रानी को गाड़ी हकाऊ थी उसने हकाई थे रानी तो हकल से वजह से कचलोटी से राजा दिलंग की बाद में ये ज्यादा जाने से उन्होंने लग गया घर वाले नहा टूटी थी माँ की बोलियां टूटी सुबह भी अच्छी से रानी मुझे मालूम है कि जो मानी गोली गोली कर लेगा वो कौन कहाँ की बात है आने कहती है तुमने ये कुमार रानी मेरी मालूम को दे सोनिया भी जीते लागी थी वो मैं भीतर कार में बालों में बुरा दे दे अपने अब तो राजा जी भी जीते तो कुछ मानी को कुछ टूटे होते यही नहीं मिलते सुबह सुबह की तो अपने इंतजाम में अपने कुछ इंतजाम में उनको कहाँ रहे कहाँ रहे सोए से कुछ बिलाव बिना हो गए दुकान दुकान एक दिन अब उनकी बेटी हटी राजा की वही जम भी बिलाव के कहाँ आओ तुम बेटी को जम भी जम की नाव के बेटी को सो दिन वो फूलन की तरह तो लगती हुआ सो अम्मा ने रोजिना डाली लगा दे और फूलन खुल ले जावे राजा महती सोची के मालूम तो इतने आई तो हम आई बगीचा घूम आए तो बगीचा घूमन गई भी सोते बार राजा की लड़की वही भाई राजा ने सोची कि जितने का छीना छीकी तो यह है नहीं है तो कोई राजा की लड़की तो वो जैसे तैसे घूम पहुंची गलत पहुंची से गलत मास पांच के उनने कही अब्बास से कही मालूम सुनिए तो माता जी रोक के डाली तुम लगा आज डाली हमें लगा दो तो उनने डाली उन्हें लगाई आई अब बादशाह ने अतिशय राजन की पूजन लौटी बाबन लौटा कंकु बाबन लौटा पूजा तो राजन ने सोची अब उनकी रानी अपनी बादशाह की स्वप्न उन्हें खाली लगाई थी उन्हें परसों बिना की हवा कर रहे बिना की हवा कर रहे जाएंगे उनकी गाशा का सुबह में सोची और बन के हमारी खुलवा लिया उनके बन में ना छोड़ आई थी भाई ना करती हवा सुनने हर सांस लगी दूजन में सोची के कोई बात में खरकसा है राजन की बात में कोई खरकसा है सुनना उसे पूछी जा रहा है बोले क्यों खमास रखता बोले कले कही राजा कारण का है इसको राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल्या जो रानी को बन में छोड़िया है और भग गया है तो उनने अति से घोरे उनने सजे और निगम ने सजे और पहुंचे बोले कल्या चलो बताओ कते कौन छाड़ में छोड़ी तो जो दुख तरह छोड़ी थी बड़ी दुख तरह ये गए दोनों गए नाव नहीं गए विदेश गए गोलगांव से बुले कर ले अब उनमें हती सुबह गाड़ी व पीनस की जो रास्ता आती वह ढाई लेंगे सो मालूम के पास भी पहुंच गए राजा बुलंद की बाग में उड़ गए पहुंच गए सो उनने कहते तो ठीक है उतर जाकर उन्होंने का किस्सा कर तो दूरा जो जन में गए सो उन्हें मिल गया मालूम ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहा हो परदेसी कैसे फिर तुम जगह बात और हमारे राजा संत तो तुम्हें जान से मारा रहे हाँ से मालूम को साली तो मालूम से पूछी सारी बात तो मालूम ने उन्हें सारी बात बता दी तो रानी जो है रंग महल में पहुंच गई राजा दिलंग की अरे बादशाह तो बदमाश होते ही तो कोई गौर रूप काट कोई गौर रूप काट उन्हें पद जो साड़ी करी तो माली है किसी उन्हें बोलते राजन बोले कल दो भोरे वाले आए और दो जाते और बहुत परेशान कर रहे हैं उन्हें सब नाश कर दिया बगीचा को तो उन्हें छज्जा दिल्ली तुमको राजा बुला रहे हैं बोले कल हाउ साहब रक्तवंशी हते बिल्कुल यहाँ से वो सजगज के फिर गए अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी जल में सलाह हो गई। बोले कल तुमसे बात करे से तुम मुँह काटेंगे और हमसे बात करे तो हम मुँह काटेंगे। से राजन की बगल में की बोले बैठो बोले अब उनमें हटो बीजक राजा बिलन गया कि अगर जब बीजक जी में पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे। तो अब उन्नति से जब सलाह हो गई वह सकाय से काम लगाओ अब उड़ाने में डेरा जाओ डेरा जाओ। तो देखो है राजा बिलन ने जो बात हो गई तो हमारी रानी बन जाओ। बोले कल नहीं ये राजा बिलन तो बात कटी चल गई और जो मकान गिरन चल गई। सुबीर ने कहते ठीक है सुबीर के भज्जे जो काम लगाओ सुबह अपने नदी खोने की जा जाए जाने से रानी जो बदबूत लगी से छाजे पे जातन कर रही थी से बीजक लाई थी बीजक बदबे लूटा आतन कर रखती जाता लूटा न लिखो है तो सुबह बीजक कमरे के बाद साल में बात लगी बीजक मासले बाद साल में बीजक ने बात की बोले कर ले ठीक है वो बोले कर ले ठीक है तुम तसला पटकट पटकट और उनके सार पांच सीखी बड़े हुई और तुम अपने चांद निकली कसू वक्त अभी तो खिलाड़ी हटे सो उन्हें गोई लोटा गाओ वो लोटा उन्होंने गाओ सुबह ने फल ले लाओ विद्वन के बल्ला क्या सुन और बल्ले लोटा उन्हें बाद में महाराज तो राजा कोई कल अब सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम काट लो हमसे करे तो तुम काट लो सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे दरबार में भगया एक दिन आते क्या के पहुंचे गए राजा ने कही बोले कल ले कई साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कल ले के दी थी लड़की की शादी करी उनकी रानी मिल गई हती बात तो हो गई।
1: देखो दोस्तों या तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी को सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम सजावे को समय तो अपने दोस्त खुद ही कार्यक्रम सजावे की अनुमति अपनी तक में फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने कार्यक्रम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौनसो कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैया की बातें करें और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें कि आप इन शब्दों से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो गए धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग है। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।

0: तो भैया अबे सुनो अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाँव के सुन बताओ है और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे रहे हुआ दादा
2: क्या नाम है? वो पचास गया हम कहना गुलाटी का मिला कैसी मिलाड़ी।
1: अबे अबे आप दादा कहा करे तरह
2: वो हलवाई का काम कर अपने देवी देखे हलवा
1: और
2: हलवाई का हम खराब किए काम में दादी मिले।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से कैसे वो चाहते हो? जो भी समस्या है जो अपने भड़क रहे
1: आप जो बता रहा है बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिक्कतें आने लगत और का परेशानी दिखते आती है अपन का
2: बुढ़ापे में जो देखो ना खाना मरत देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाए घूम नहीं पाए घूमने फिरा हर एक बात की मुश्किल दिखा दे
1: और वैसे वो समस्या है अपनी।
2: अब वह समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ
2: पूछा थे अस्पताल
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आपका क्या सर?
2: सेवा खुशामत सब करा थे ठीक नहीं है चला शुरू करना वो कहना
1: दिक्कत है उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सकत
2: रात में झेल सकत में बैठ लो ऐसी भी याद है पैसा से खाद तो ठीक है अरे तस्वीर नहीं है तस्वीर में तो दस रुपए जब उसको तो खर्च हुआ ही आदमी को हाँ मान के चलो कठिन दस रुपए उठा के सही जाते
1: हैं भाई। आपको कैसा कटा था?
2: दो बच्चे इंसान दिमाग लगा दे सुझा रहे सुझा रहे अब उठाएंगे चलो
1: अच्छा। और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत का छूहे नहीं है ऐसी
2: हाँ खाली
1: हाँ जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: दिक्कत है आदमी का
2: दिक्कत तो देखो तो नहीं होती है जो काल है जो नहीं बाज पाए हम मतलब और दूसरी नहीं दिखा दादी बाज पाई नहीं दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सका तो खावे पीवे की आपकी का है?
2: खाई पीने में कहीं कमी नहीं आए मतलब जो घर में है तो खाए।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वादे की में पालन पाए
2: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत इज्जत नहीं आए और पापा जाना फैली पापा जी जाना फैली तो भला अपनी अपनी हो चाह रहा आदमी हमारे बार बच्चे जो चीज मिल जाते हमारे मिल जाते दूसरे की जठानी न मिल गए दीवानी न मिल गए ये ऐसी समस्या है मतलब अरे समय में
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे होनी चाहिए अब कि सबका काम
2: जो हो तब जी तो शांति हो तब जी प्रेम हो तब जी सब में बड़ा प्रेम प्रेम एक उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम में तो सबसे मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हमें सुविधाएं कभी आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छे हो सकते
2: प्रेम अपनी मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर उबर कभी काम नहीं रहते हैं मतलब जीव अजीव काम
1: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा टका खर्च ना
2: उठा पैसा
1: तो अपनों का के वो है जो रेडियो में जो भी आप सुने आदमी तो कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चट जी और कैसे रहे चट जी आपका कर्म चाहिए सब जनन से आपको का के वो
2: है बात बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करेंगे
1: वही बात बड़ी बात है।

0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा हो देवे बाल बच्चे चले या तीर्थ यात्रा हुआ है, अब पैसे मिले तो ज्यादा आगे है कमजोर हो गई, पैसा खर्च को मिल गया है, प्रेशर बन जाए तो अच्छी बात है।
0: और कहते वो चलता
1: जी चल के आराम चल मिल जाए, प्रेशर बन जावे तो पैसा खर्च को अपने सामान महीना खाद चला।
0: ठीक है दादा, जहाँ आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: तो देखो भैया, अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते, कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारों धाम करे। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी है, लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हैं उनको भैया बिल्कुल बात नहीं में बताए, तो अपन और सुनत है एक गीत खो। और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने, और इनने देखो इस शब्द में का कहो गौवा के गोबर मंगाओ, यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और सब संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो और सवई पंच भैया सुने।

तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गाले है उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी काकेर है, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनमें अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आओ थे कार्यक्रम को सुनो जी काकेर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारे पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तगेला के पास ओछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए वक्त है अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यार प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: ऊंचे
1: पहाड़ पर बैठी मैया रतनगढ़ वाली। चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवा है जो भी तोड़ का हो रहा अपनो।
2: बस बढ़िया है सर, फोन वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप कैसे फोन लगा उतरा बुकर है।
2: ठीक है सर,
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार नमस्कार मेज भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पास वाले के पास और सब बहुने वाले हो गई, पानी आने लगो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी कुंडली मेरी कितना कौन सा भी सुने हो?
1: आज हम इस समय प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज है?
1: हाँ
0: चलो ठीक है। अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: गीत कोई गाओ थोड़ा।
0: चलो
1: बोल कोई। हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको भी जरूर सुनाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।
2: लाल दुपट्टा उड़ गए दरी हवा के।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब कार्यों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का तो वहां देख पाया एक बार।

लगे खिसक ने सर करो की आंख दिखाई में और पतचाने तो बुला

देख दिगंबर शिव शंकर का और भालचंद मुस्काए हैं और टपका अमृत सिंधु धर्म गोशाला पर शेर जगा है नादिया भागा भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है बिखर गया परिवार बात जा बनी बनाई में और सच जाने

0: ऐसे फल कहना है
1: मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छबी

0: कर सगाई में मस्त रहे चलम
1: नंबर दसवा में चार साल। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी कुंडली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुन रहे हो?
2: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गाँव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाई से सतीश साहू जी?
2: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
2: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
2: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बंद लिखा सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
2: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।

0: सिंह भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सालनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें से वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कुछ प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही भजन सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों हमारा नंबर है 94-25-14-17-26। बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

0: दोस्तों फोन लगाना है शनिवार के दिन 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: भैया भाई बदनाम गोलक खाए भैया,
0: और साथियों अभी कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे बीच से अपने दोस्त माता जी खुद जाने की अनुमति। साथियों अपनी तक फिर हुई है मुलाकात एक डेरा पे एक कार्यक्रम में, जब तक के

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: किस सावन करो जाते ससुर।

सगरी पंख पसारे कनिया सगरी पंख पसारे।

सखियां सभी के लिए फॉलो।

মন খবত মালাল মন খবত মালাল কদিয়া মোতে হরি কিরত বাতা।

0: हरे शाह नमस्कार। तो बहुत अच्छा हूँ माता दीन भैया, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही हमसे वार्तालाप करते रहें, अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ माता दीन भैया से बुंदेलखंड ओरछा से।
1: जी भैया, और क्या हो रहा अपना?
0: बस बुंदेली लोग गीत सुन रहे हैं बुंदेलखंड ओरछा पर, और आपसे वार्तालाप करने के लिए
1: जी
0: फोन लगा रहा था, फोन
1: हाँ,
0: लग गया और आपसे वार्तालाप हो रही है।
1: बिल्कुल
0: बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है जब बुंदेलखंड ओरछा में माता दीन भैया से और वर्षा दीदी से अथवा मनीष जी से वार्तालाप होती है, बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभूत होती है और हमारी पसंद के गीत भी प्रसारित होते हैं तो सुनकर अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल। आज कौन सा गीत सुने अपन?
0: आज तो श्रावण का अंतिम सोमवार है और
1: जी
0: देवों के देव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आनंद से मंगल से रहें और अपने जीवन को सुखमय और

0: आनंद मन बनाए।
1: जी
0: तो सावन और श्रावण के अंतिम सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शिव महिमा
1: जी
0: और गीत के बोल है प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाल, ये भी सुना दीजिए शिव महिमा से।
1: जी जी
0: प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला।
1: अच्छा
0: बहुत अच्छा सुंदर गीत है और हरिवंश संघ ने गीत गाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरे ख्याल से ये हरिवंश ने गाया है।
1: जी
0: जी जी जी
2: ये है यूरोप।
0: और महाराज भैया आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया है बढ़िया है।
0: और मौसम कैसा है वहाँ का?
1: मौसम बादल छाए हुए हैं।
0: जी यहाँ भी बादल छाए हुए थे, सुबह 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक बारिश हुई है। अच्छा। रिमझिम फुहार पड़ी है और 1 घंटे तो झमाझम बारिश हुई है। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है। आज ये सोमवार के दिन देव को देव महादेव ने अपने अनुकंपा बरसा दी।
1: जी
0: हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सारे नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी भैया, कहाँ से?
1: मोहम्मद हारून गुल्लम ग्राम अकबरपुर जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से। बस
0: जी मोहम्मद जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं, ठीक हैं। और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया हैं, आप सब लोगों की कृपा है।
1: जी, बारिश हो रही है क्या
0: जी
1: आपके
0: बारिश तो अभी तो नहीं हो रहा, बादल छाए हुए हैं।
1: उधर? जी, हमारे तो कल गिर गया पानी।
0: हाँ, रात में यहाँ भी बरसा पानी तो कुछ।
1: जी, अच्छा खुशनुमा मौसम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया मौसम है
1: जी,
0: जी। अपन कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: हाँ, फिल्म है सावन का
0: जी,
1: घर, सावन आए बादल छाए। जी,
0: सावन आया बादल छाए।
1: अब
0: बिल्कुल
1: तो जाने की तैयारी हो रही है।
0: हाँ। और कहाँ हो रहा अपन?
1: कुछ नहीं हो रहा, हम बैठे हैं, लेटे हैं।
0: हाँ चलो बढ़िया है।
1: हाँ जी, और बस दोनों प्रोग्राम आता है, सोमवार और शुक्रवार को नहीं आता
0: सोमवार और बुधवार, 2 दिन।
1: है? अच्छा, 2 दिन आता
0: हाँ, 2 दिन आता है, सोमवार और बुधवार।
1: है, तो शुक्रवार को भी आता है, बंद है अभी तो। जी
0: हाँ
1: जी
0: चलो ठीक है। और कुछ? और
1: जी
0: चल गीत की ओर चलें का?
1: जी जी
0: नमस्कार भैया।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कहाँ से?
1: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। बढ़िया
0: जी योगेश जी, कैसे हैं?
1: है, अच्छे हैं
0: और क्या हो
1: जी।
0: रहा
1: अभी
0: अपना?
1: तो हम बच्चों को स्कूल लेने आए हैं
0: अच्छा, बच्चों को स्कूल लेने आए हैं।
1: जी
0: चलो, बहुत बढ़िया है।
1: जी
0: और गीत कौन सा सुनेंगे अपन? हेलो फरमाइश में
1: गीत आप हमें सुनवा देंगे।
0: जी।
1: फिल्म और से एक प्यार का नगमा है जी।
0: एक प्यार का नगमा है
1: धन्यवाद
0: जी। और क्या सुनेंगे? चलो ठीक है,
1: जी जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के

0: हेलो। हेलो
1: हाँ सर
0: जी भैया, कहाँ से?
1: उमरिया से संतोष कुमार। बहुत
0: जी संतोष जी, कैसे हैं?
1: अच्छे
0: और क्या हो रहा अपना?
1: अभी लौटे थे श्रोता सम्मेलन से, तो बस अब घर के कामों में लग गए थे।
0: अरे चलो, बहुत बढ़िया है। क्या होगा सम्मेलन में?
1: श्रोता सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन होता है सर, अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन होता है, जिसमें हमारे सरकारी तथा खासकर के आकाशवाणी के और प्राइवेट चैनल के उद्घोषक आते हैं और उस सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, और तमाम उन्हें श्रोताओं को सम्मिलित किया जाता है जो लगातार रेडियो का प्रसारण सुनते हैं।
0: जी
1: तो इस सम्मेलन में हम लोग भी गए थे सर, बहुत दूर दूर से श्रोता साथी आए थे, जैसे महाराष्ट्र हो गए, छत्तीसगढ़ में तो ये कार्यक्रम हुआ था भिलाई दुर्ग में, और इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश के सभी श्रोता वर्ग थे, खास करके पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत जी, राजेश सावली पाटिल जी, और जितने दूर दूर से कहा जाए बिहार से भी श्रोता साथी आए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सर सभी से मिलकर के।
0: चलो बढ़िया है। तो आज कौन सा गीत सुने अपन?
1: आज आप मुझे सुनवाइएगा मुकद्दर का सिकंदर मूवी का गाना,
0: जी कौन सा गीत है?
1: इसका यही वाला है सर, रुके हुए आते हैं सब।
0: अच्छा, रुके हुए आते हैं सर।
1: हाँ सर, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन हाँ कहलाएगा, ऐसा करके सॉन्ग है।
0: रुके हुए आते हैं सब।
1: जी सर,

0: के बोल और तो नन्या कुछ,
1: जी सर,
0: दीप के बोल और तो नन्या कुछ, शुरू से।
1: इसका यही है सर, मुकद्दर का सिकंदर अगर डालेंगे तो वही गाना आएगा।

0: سلام سلام
1: रोते हुए आते हैं सब।
0: हाँ सर।
1: हाँ चलो ठीक है।
0: और सर आपकी प्रस्तुति बहुत ही खास होती है, बुंदेलखंड ओरछा हमारा ऐसा प्रोग्राम लेके आता है। और अगली बार बताएं सर, ये विश्व अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन वर्ष 2026 यानी छतरपुर और साथ में वहीं खजुराहो के आसपास रखा गया है, जिसमें हमारा बुंदेलखंड ओरछा और पूरी टीम भी पहुंचने का प्रयास रहेगा और आपसे मुलाकात करने का भी जरिया मिल पाएगा सर हमें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा है, ये तो क्या मेरे पास में है।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ सर जी नमस्कार।
1: जी भैया, आवाज आ रही? जी,
0: हाँ सर जी, आवाज तो आ रही है।
1: कहाँ से? अच्छा,
0: अरे हम तो यहाँ गुजरात से बोल रहे हैं, राजकुमार
1: जी को बोल रहे हैं? गुजरात से? राजकुमार जी, तो
0: हाँ सर।
1: अभी रेडियो सुन रहे का?
0: अरे चाहे झांसी में थे तो सुन रहे थे, तो यहाँ नहीं सुनेंगे?
1: अच्छा, झांसी में रहते पहले आप?
0: हाँ पहले। आपका नाम क्या है सर जी? माता
1: जी, हमारा नाम माता दीन है
0: दिन तो आपसे तो बात हुई है सर जी।
1: जी। तो आप कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: आप सुना दीजिए, कोई बरसात का गीत सुनाइए। अच्छा
1: जी,
0: हाँ,
1: बरसात का?
0: इस मौसम का सर जी, बरसात का नहीं, इस मौसम का। जैसे बरसात का गाना कोई होता है ना?
1: हाँ,
0: हाँ, बारिश
1: तो इस
0: का कोई गाना।
1: हाँ,
0: हाँ वही।
1: चलो बढ़िया है। और बताओ।
0: और सर जी बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं?
1: बढ़िया।
0: आपकी तरफ बारिश हो रही सर जी? बारिश हो रही है, बंद है बारिश?
1: बारिश अभी बंद है?
0: बारिश इधर भी तो सर बंद है, करीब चार
1: अच्छा,
0: पांच दिन हो गया। हाँ
1: हाँ चलो, इतने पानी रात में बरसो तो।
0: चलो अच्छा है सर जी, वहाँ तो मूंगफली के लिए तो पानी चाहिए ही।
1: हाँ
0: और सर जी घर में सब बच्चे हैं?
1: बिल्कुल, सब बढ़िया हैं, सब मजेदारी हैं।
0: बस बढ़िया रहना।
1: हाँ
0: ठीक है सर जी,
1: चलो,
0: सुना
1: ठीक
0: दीजिए। ठीक
1: है ठीक है, गीत की ओर चलते हैं अपन। है,
0: है।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप वीर अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम को समय तय संपन्न हुए को होगा है, तो अपने दोस्त माता दिन भैया को तो ये कार्यक्रम सजावे की अनुमति। और चलत चलत आप सुनो प्यार प्यारे से हिंदी गीतन को, लोक गीतन को आनंद नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवेरा अपने रेडियो साथी माता रीम के संग में
1: और भैया काशीराम के संग में।
0: और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन्म के लाने जो कार्यक्रम कप्ताएं। जी हाँ दोस्तों, कप्ताएं कार्यक्रम में अपन सब जने सुनत हैं कवि भैया की लिखी है कप्ताएं को। सो आज भी अपन भैया अपनी कप्ताएं को सुने जो कबीर जी की लिखी है कप्ताएं हैं।
1: माता दीन भैया, अपन ने कविता को नाव लो, वो कविता को जब नाव लो तो अपने मन में तो खुली हुआ
0: बिल्कुल
1: का है कि कविता जो बात अपन ना तो देखो मौसे के पाउता है।
0: सही कह रहे, सही कह रहे,
1: और ना वो बात को अपन उपकार कह पाउता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन जो देखो अपने कवि भैया ने, वो कवि जो हो गए, उनने ऐसी रास्ता कविता के माध्यम से वो गा के बता दी थे कि पूरी लाइन।
0: हाँ हाँ,
1: अब
0: जो भी बात उन्हें कने आऊ बाबे अपने कविता के माध्यम से दर्शा दे, अपन तक पहुँचा दे। ऐसे जाधी कही गई कि जाना पहुँचे रवि, जा पहुँचे कवि।
1: तो जैसे भैया कहे कि जो कविताएं हैं और जो कवि हैं, जो अपनी बात को बिल्कुल भैया नेके से ऊपर तक पहुँचा दी थे और जन जन तक
0: हाँ
1: जानकारी हो जाती।
0: सही बात है।
1: आप हाँ माता दीन भैया के देखो, समाज हो
0: बिल्कुल,
1: काम हो
0: हाँ,
1: या कोनो समय हो,
0: सही कह रहे,
1: तो उमे हर जाना अपने कवि अपनी कविता के माध्यम से बता दे।
0: हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे संदेश भी दे दे जो अपने जीवन में काम आवे वाले बातें हैं, वे अपनी कविता के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा लिख के और समाज में पेश कर दे, तुम्हें जिसे के समाज सुधरे, हम सुधरे, आप सुधरे, अगर सदमार्ग पे चलें, वे सदमार्ग की बातें हैं जो कवि भैया भी लिख के और अपन सब जनन तक पहुँचाऊ थे।
1: देखो अपन ने जब बात कही जो सासों मास की ताजी है, का है के अब जैसे समाज में बैठे या घर ले, तो कहो देखो हमें कछु काउ से भैया लान देने न देने
0: है? सही है।
1: हमें काउ से तो फिर उनने देखो कितने अगर जा बात अपन मुंह से कह रहे कि हमें काउ से मतलब है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: जो कबीरदास जी ने कितने अच्छे तरीका से कही।
0: हाँ हाँ, कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कछु लेना ना देना मगन रहना, कछु लेना ना देना मगन रहना, और लिख रहे आगे कि पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले मेरी मैना।
1: हाँ भैया, अब देखो का है के भी का कह रहे कि हमें काउ से कछु लेने नन्या और ना हमें काउ से देने आ, और का बोले कि पांच तत्व यानी जो शरीर है अपनो।
0: हाँ।
1: वो देखो उन्हें कितने एक ही बात में बता गई कि जो अपनो शरीर बनो है वो पांच तत्व से बनो बनो।
0: हाँ, बिल्कुल। और उन्हें इसके आगे लिख रहे कि गहरी नदिया नाओ पुरानी, गहरी नदिया नाओ पुरानी, हर के बटिया से मिलना मिलना, के बटिया से मिलना।
1: नहीं, कितनी बढ़िया बात। अब कहे गहरी नदिया नाव पुरानी, देखो वातन वातन में कहे गहरी नदिया नाव पुरानी और केवटिया से मिले रहना।
0: हाँ,
1: केवटिया से मिलते रहना। देख का कह रहे, देखो कितनो एक ही लेने में बता रहे राहगीर खां और आम जनता का।
0: बिल्कुल।
1: कहे भैया सुनो, बहुत ही गहरी नदिया है।
0: हाँ,
1: अथाएं हैं
0: सही
1: हरी, और जा भी संगे कह रहे कि देखो जो नाव भी पुरानी है।
0: बिल्कुल,
1: जो नाव पुरानी है, नई नोई है।
0: हाँ,
1: उपड़ तो रहे तुम जातन घुसतन पहले। उनने एक ही शब्द में कही कि गहरी नदिया नाव पुरानी और केवट जा से मिले रहना,
0: मिलके रहना
1: है, काय के है मिलके काय रहना के भैया तुम इतने जा रहे हो और कोनू अंदेशे वाली बात है कि नाव पुरानी है और ऐसा ना हुए के कछु।
0: सही है।
1: संदेशे की बात आ जाए तो पहले कह दई कि तुम केवट भैया से मिलके रहना, ऐसो हो सकत।
0: बिल्कुल सही बात
1: का कितने उनने तरीके से अंगाई बढ़ा दी।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और आगे जो लिख रहे हैं कि तेरा पिया तेरे घर में बसत है, तेरा पिया तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना।
1: अब एक ही बात में देखो कितने आयत बता दे भैया है, कि तेरा पिया मेरे घर में बसत है।
0: तेरा पिया तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर नैना देखना नैना, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरणन में लिपटे रहना।
1: कितनी नौनी बात, देखो अनाई से और देखो एक ही बातन बातन में जी बात खा, अगर अपन के नहीं पाओ के नहीं पा रहे वो बात खा, न सुझाव दे पा रहे हैं वो बात खा, लेकिन कबीर दास जी ने एक ही लेन में एक ही शब्द में ओते बात को पहुंचा दे।
0: बिल्कुल, उन्हें गुरु की बात कितनी बढ़िया कही कि गुरु बिन ज्ञान तो हो ही नहीं सकत, इसे उन्हें कही के सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरणन लिपटे रहना, और जामे बोले मेरी मैना।
1: अब मैना की बात कही जो देखो एक अंगाई की बात, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अरे बेका के कहे कबीर, अरे जो लेखक हैं बेका के वो भैया जो साधु हैं, जो उनके पद पे चल रहे, जो आज भैया समाज में बैठे हैं, उनसे कहा बोले कि सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपटे हैं, यानी जो मार्गदर्शन करता है अपन, जो मार्गदर्शन कर रहा अपन खा, जो आगे की घेल बता रहा अपन खा, तो भैया उनके संपर्क में अपन खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वही गुरु है अपना,
1: वही गुरु है कि नहीं।
0: और कहावत भी कही गई है बूढ़े पुराण ने कि बिना गुरु के तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं हो सकत, कोनो गुण नहीं मिल सकत।
1: अब देखो बिना संगत की भैया और बिना कर्तव्य को तो कछु बात ही नहीं है, लेकिन जब कहूं बिगड़ जात बात ये बातें तो बात जो कही है कबीर जी ने कि इनकी संगे तुम्हें ऐसे कितने कौन पग धन्य तो अगर कोनो बात ई बातन के अलावा बिगड़ जाए तब
0: बिगड़ी बात
1: कैसे बने
0: है? सही कह रहे, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कितनी बढ़िया बात लिख रहे कबीर दास जी
1: कि तेरी बिगड़ी बात बन जाई और हरि नाम जपाकर भाई इतने नौने शब्द हैं।
0: सही कह
1: रहे, शब्द के संगे संगे सम्मान लगाते और उनको एक आइडिया बताते। अब का बता रहे कबीर जी के कैसे तुम ऊपरे।
0: अब अगर तुमने जो अपने जीवन में कछु अच्छे काम नहीं करे, कोनो घट काम करे, अगर आपकी लेन बिगड़ गई, आप भगवान में या फिर भक्ति में आप अपनो विश्वास नहीं रख रहे, तो अगर अपने जीवन को सफल बनाने हैं, जीवन को सफल बनाने हैं, तो हरि नाम जपा कर भाई।
1: अब का है कि एक मार्गदर्शन उनने बता दो, वो मार्गदर्शन के संगे संगे और जो भी बता दो कि का करने कि स्याही सफेदी आई।
0: बिल्कुल,
1: एक स्याही ही सफेदी आई और फिर क्या बनेगा भाई।
0: जब तुम्हारी सफेदी आ जाए शरीर पे फिर तुम पे कछु नहीं बन रहे हो, अगर आप वृद्ध हो गए फिर कोनो काम के आप नहीं रहे। विषय कबीर दास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि तेरी बात बिगड़ी बात बन जाई और हरि नाम जपा कर भाई।
1: एक ही बात में भैया उनने संदेश दे दो काके दे कि अगर भैया देखो समझ में आए या तो अपने आए कि अगर बुढ़ापो आ गो और मुड़ पे बाल सफेद हो गए।
0: सही कह रहे,
1: और जब सफेदी आ गई तो फिर का कह सकत।
0: सही कह रहे,
1: कह सकत कछु,
0: वो तो समय है
1: ना, तो भैया अपनी काम में कहे ना तो अपन काम कह सकत और ना फिर कोनो काम नहीं कह सकत। अपन सोचत रहे हैं, का सोचत रहे क्या फिर कर ले तो सोचत में देखो उमर भी नशा जात।
0: सही कह रहे,
1: उमर नशा जात और समय नशा जात।
0: बिल्कुल
1: है, कविता में जो भी कही कि इनकी उम्र भी कर ले और समय भी कर ले, लेकिन अपन जितने अपन कहा पहुंचने हैं उतने बिल्कुल नहीं पहुंच सकते।
0: सही कह रहे,
1: आने का कह रहे देखो राम नाम के बड़े आलसी।
0: हैं, कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं।
1: राम नाम के बड़े आश्री आलसी और तुम्हारी मति गई बोराई। राम नाम के बड़े आलसी गई मति बोराई।
0: अगर आप राम नाम के आलसी हैं तो समझ लो कि आपकी मति बोरा गई।
1: देखो कहवे को मतलब कभी जी को कहे कि जो काम जो काम तुम्हें करने,
0: बिल्कुल
1: जो कर्तव्य तुम्हें करने, अगर वो पग से समझे
0: सही क्या,
1: अगर वो पग से अपन तनके विचलित हो गए ठीक है ना, तो फिर वह मती जो अपनी बोरा गई वह फिर अपने नाने एक भैया बहुत ही खराब,
0: बिल्कुल
1: है कि जिते जोन अपन का जिस जगह जाने हैं तो उते अपन है ना पहुंच गए।
0: सही कह रहे,
1: सही कह रहे।
0: और सुनो तो कबीर जी लिख रहे कि आप भूले काय में रख जावा, तो ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, दुनिया दौलते माल खजाना। देखो ये कह रहे कि ये दुनिया है जब दौलत में माल खजाने में और बदिया बैल उगाई में,
1: भैया
0: भी दे रहा था
1: काग है जो भी देख रहे कि दुनिया दौलते माल खजाना। अरे जो संसार है, जो भाव सागर है, हर आदमी का है, यही में भी तो हाय पैसा हाय माल खजानो, और कागज जांगा की बन जी हमारी जासो बीगा की बन जा है, जे हमारे बैल हैं और जे बदियां हैं वो जे गंग में।
0: सही कह रहे,
1: एक ही लेने में वो काबूले के जो कछुनन्या,
0: हाँ तुम्हारा कछुनन्या,
1: कछुनन्या हम जानी माया
0: संगा चलेगी।
1: अब कबे कह रहे कि जब भैया बुढ़ापो आ गो और बुढ़ापे की सब कछु कर लाओ वरना कछु नहीं कर पाओ।
0: सही
1: तो फिर जो भी है कि होते जब जान लगे तो फिर अब काके रहे, हम तो जानते
0: कि माया संग चलेगी
1: है, का जाने लगे जब प्राण आखिरी पे कि हम जाना संग, हम जाना काया संग चलेगी,
0: हम जानी माया संग चलेगी और सबई यहाँ रह जाई।
1: नहीं जावा जब जाना चाहे कि जो अपन ने जो माया जोर जोर के धरे और धरी है तो कहे कि अपने संग चे जे जा, लेकिन ऐसो भैया कछु ही नन्या, ऐसो
0: कछु नन्या,
1: बिल्कुल कछु नन्या, भाई बंद और कुटुम कबीला।
0: देखो कितनी बड़ी बात है,
1: अरे भाई बंद और कुटुम कबीला काम ना आए कोई आई, देख रहे तुम, भाई बंद कुटुम कबीला काम ना कोई आई,
0: काहे खोए भैया,
1: देख रहे
0: तो अकेले जाने
1: उते तो
0: सब तई रह जाए, तई भाई तई बंधु तई कुटुम तई कबीला सब कछु तई रहने। तो कबीर भैया जी ने बहुत ही बढ़िया जवाब लिखी है कबीरदास जी ने के भाई बंधु कुटुंब कबीला काम न कोनो आई, को काम नहीं आई, इसे हरि नाम जपा कर भाई, केवल संग के लाने। एक ही बात बताई उनने, न तुम आओ दौलत ना माल खजानो ना कुटुंब ना कबीला ना भाई ना बंधु, को संग नहीं जय, केवल संग जय है तो काजे है हरि नाम जपा कर भाई।
1: और संग देखो का सोचत रहे कि उनने जो कछु बताओ है अपन का और जो उनने मार्गदर्शन दाए हैं, लेकिन कछु ने कैसा कि सुगा पड़ावन गन का तारी, सुगा पड़ावन गन का तारी और तर गई मीराबाई।
0: बिल्कुल
1: उनने संगे जा भी कही कि जिन जिन भंजन ने जिन बेनन ने और जिन लोगन ने इनके आदर्श था चलो है वो जिनने मल लगा के या कोनू बात मानी है या कोनू कथा सुनी है तो वे तर जात या वो मार्ग पे पहुंच जात। जैसे सुबह अरे पड़ावन गन का तर गई, अरे कितु काऊ ने भागवत या कोनू चीज सुनी तो सुन सुन के तर जात, और संगे मीरा भाई का जो लगन हती बावन की पूरी हो गई।
0: सही बात कह रहे हैं, और एक के संगे संगे कबीर जी ने और देखो का लिख रहे कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो कर गए सदन कसाई।
1: अरे भैया का बात है, अपन ने देखो तो इतने नोने तरन एक शब्द कैसो नोनो आगा के तर गए तरन कसाई,
0: तर गए सदन कसाई। सदन कसाई की कथा बहुत ही बढ़िया कसाई है कि सदन कसाई का काम करते काशीराम भैया जी कि वे अपनो का है कि उनको काम होता कि चोरी डकैती करके लूट माट काट करके और अपने घर को हम खर्च चलाते। तो एक दफे की बात है कि जब वे लूट मार करके अपनों जो काम चलाते हो घर के सभी सदस्यों को खुआते कमा कमा के, तो एक बार भगवान जी उतर से निकले और भगवान जी ने कही कि याद देखो एक कल तो थोड़ी वक्त देना चाहिए कि जब तुम जो काम कर रहे गलत काम और तुम्हारे ये गलत काम में तुम्हारे घर के भागीदार है कि नहीं है। तो भगवान जी उतर से निकले से उन्हें कही के जिनने इस भगवान को फैला पत्रा सा फड़ा छुड़ू लाओ तो उनने कही कि भैया तुम जो लूट मार काट करके कहाँ ले जा तो उनके अपने घरे ले जा तो और अपने घर के परिवार को खुआओ पियाओ तो हमारे घर की आजीविका चल रही। सो इनने कही जा बताओ कि हम तुम्हें सब दे रहा हूँ चलो ले जाओ तुम लेकिन तुम अपने घरे जाके और जितने जनन को खुआओ पियाओ थे उन सबसे जा पूछो कि हम जा हाय हत्या को ले आ रहे मार काट करके ले आ रहे तुम्हारे हमारी पाप में भागीदारी हो के नन्या ठीक। सो भैया जी गए बोले यहाँ तुम भाग जाओ उन्होंने कही हम ना भागे तो हमें एक पेड़ से बांध दो। सो फिर वे बोले हाँ बांध दो। अब बांध के जे घर गए घर घरवाई से पूछी और सबसे लड़का बांध से पूछी कि काय भैया हो तुम्हारे जा बताओ कि हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हम जो हाय हत्या को ले आ रहे हमारी पाप की भागीदारी तुम्हारे बनो के ना बने। तो घर बार बोले हम काय को तुम्हारे पाप की भागीदारी बने तुम कर रहे पाप से तुम भोगी दो।
1: माता दी ने भैया एक तनक कछु बात का है कि उनके दिमाग में

0: जो कसाई है तो वो उनके दिमाग में का हती कि जो जो घर है हमारो और जो जो मोड़ी मोड़ा है ये सब हमारे आए और ये सब मतलब जो कछु है तो ये कहीं माया जान लगती है कि हम जो काम कर रहे हैं तो ये सब हमारे संगे जी और संग के हमारे भागी हैं तभी तो वो मार काट काट करके गलत काम करके लिया उसे तो
1: सही कह रहे हैं।
0: अब उनके दिमाग में काफी बज जा कि वो जानत नहीं है तो इनको परिणाम
1: का भुगतने
0: का भुगतने
1: तो फिर एक बार फिर का भाव के जब फिर उन्हें फिर छोड़ दो वो सब काम न मार काट करी न कछु करी
0: नहीं तो उसे ऐसे का भाव कि जब भी पूछ भी आए हाँ वे पूछ भी आए कि काय बज्जा और जो हम हाय हत्या और जो मार रहे और जो काट रहे और जो हमें जो पाप मिलने या जो हमें कीड़ा पड़े या जो हमें
1: सजा मिले
0: तो देखो सब जने खा रहे
1: आप सबको भोगने आए
0: काय बज्जा अपन कभी सब्जी भाजी लिया तो घर में सब जने खात के नहीं
1: बिल्कुल खा
0: अपन काम धंधो करके ले आए तो सब जने खात के नहीं
1: सही कह
0: लेकिन उन सदन कसाई को भी क्या वो सही है तो हम ले आ रहे तो जा बताओ
1: कि तुम और इनके भागीदारी हो
0: इनके मतलब जो हमें लाभ मिले या जो हानि मिले या जो कछु मिले तो क्या तुम इनकी भागीदारी हो कि नहीं तो देखो भैया का जवाब मिलो सब जनन ने भैया
1: सब जनन ने यही कह रहे कि हम नहीं है भागीदारी
0: तो उन्हें जब सब जन ने हाथ खड़े कह दे कि भैया काम तो तुम कर रहे तुम भोगो
1: हाँ
0: है?
1: जब फिर उन्हें कही के अब हम आस में बंद कर और बंद करके भी एक तला के किनारे एक बरिया के पेड़ के तरफ बैठ गए बैठ गए सो उतर कहा है कि एक में तलज्जा में पानी भरो तो
0: हाँ
1: सो एक आदमी लगाया तो कहा ढेकड़ी पानी पी देखो तो यार तीन डोंकियां सो वो डोंकियां के चक्कर में ढेकड़ी लगाए तो ते और तलज्जा में ढूंढ जाते पानी पी देखो सूने के अलावा ढोर इतने पानी पी दे आए तो भी डोकनिया उड़ी जाती और हमारी बार ढेकड़ी जाएगी सुबह छटक जाती सूने वो ढोर को पानी ना फेंक दे वो
0: अच्छा वो जो घेरे हैं तो वो पानी
1: हाँ
0: जो पानी घेरे हैं तो वो बिल्कुल नहीं फेंक दे वो
1: लाख को ढेर लाख को भगा दे ढोर
0: अरे भैया
1: अब जब सदन कसाई ने देखो तो उनके मन में आए कि इतने पाप करे तो एक और सही
0: अच्छा हमने की सौ सौ भी है तो एक भी
1: हो सही तो भैया का भाव के उन्हें जैसे भी ढोल भगाए से इनने भगा भी बाय में दस उगे हो कह रहा हूँ सब डुआ ने कह पानी दम से पियो अब जब उन्हें पानी पियो सो दही असी
0: अब देखो भैया कभू कभू का हो के दूसरे के परोपकार कर भी से तो भैया जो तो अपन जानते ही है और सभी जने जानते के खुद को
1: जब उन पशुओं को पुण्य मिलो
0: आशीष दई
1: हाँ आशीष जब मिलो
0: हर सांस ले के
1: हाँ जब सदन कसाई के सबरे पाप कट गए
0: लेकिन भैया फिर
1: ऐसे कबीरदास जी ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधु
0: तर गए सदन कसाई और हरि जपा कर भाई जी
1: हाँ
0: रह गए ये भैया हरि को जपो जी से अपन खा आगे की रास्ता खुले और या भी कही के सुगा परावन गण का तर गई तरी गई मीरा बाई
1: हाँ
0: देखो भैया जे काम जब तक अपन अपनों का तब ना करें तब तक अपन खा
1: बिल्कुल
0: ऊ चीज को लाभ
1: ना, ना मिले
0: तो ऐसा ही है
1: सही
0: आखिरी पे तो हम देखो कबीरदास जी का कहे के भैया एक काम करो फिर वे उनने ये कई मन में अपनाओ
1: हाँ
0: सदन कसाई जब उतरे से आए उनने कही जब भैया हम भैया को उन्हीं के दे संग न को दे तो अब तो भजो रे भैया
1: हाँ
0: उनके दिमाग में ये कही आ गई कि अब तो राम नाम भजो भजो रे भैया राम नाम गोविंद
1: हरि
0: जब आदमी धक्का खा जाए
1: हाँ
0: जब आदमी चोट खा जाए
1: हाँ।
0: और तब आदमी की का कहना है कि समझ में आओ
1: हाँ के समझ में आ गई
0: हाँ। जब सदन कसाई का ये बातें अपने घर ही से शिक्षा मिल गई उन्हें
1: सही
0: जिन्हें भी मार मार के काट काट के वो ले जाती और उन्हें खवाऊ थे तब उन्हें भंजन ने काके दे कि भैया तुम कर रहे सो तुम ही जानो
1: हाँ तुम्हें भुगतो
0: तो जब उनकी देखो समझ में आ गई तो वे का फिर कबीरदास जी ने लिखो ऐसे ही लोगों की लाने के भज रे भैया राम गोविंदा हरि भज रे भजोरे भैया।
1: हाँ
0: भजोरे भैया राम गोविंद हरि को।
1: सही कह रहे,
0: जप तप सघन कछु नहीं लागत, जप तप सघन कछु नहीं लागत और खर्चन नहीं गठरी। देखो का कह रहे हैं, ना तो भैया ही में हमें कछु साधन चाहने हैं, ना हमें कोनो
1: खर्चा चाहने,
0: खर्चा चाहने हैं और ना हमें ऐसी
1: गठर पे। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात लिख रहे चलो।
0: कितनी बढ़िया बात लिख रहे कि गठज्जा को मतलब के जब आदमी ज्यादा गठज्जा बांध ले चाहे कोनो काम की हो।
1: सही कह रहे हैं,
0: तो वो कहो के गठज्जा तो बहुत बढ़ जा।
1: अच्छा उसको वजन धरे फिरने अब।
0: और भैया काट अनाई का लिख रहे कभी जा। हाँ। सतन संवित सुख करण जासो भूल पड़ो, संतन सभ्यन सुख के करण जासे भूल पड़ो।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिख रहे।
0: हाँ
1: कि संतन सम्यक, संतन सम्यक सुख के कारण, संतन सम्यक सुख के कारण जासो भूल पड़ी ओ कहत कबीर राम ने जासुख, कहत कबीर राम ने जामुख तामुख धूल भरी।
0: धूल भरी ताम जोन वे मुखते।
1: हाँ
0: जोन कैसे मुखते और कैसे कैसे, लेकिन उको भैया पल और कर्तव्य और समय की कीमत है।
1: बिल्कुल
0: जैसो तुम करो और एक दिन ऐसा होने के जो मुख धूल में।
1: हाँ
0: मिल जाने।
1: सही कह रहे,
0: मिल जाने के नहीं मिल जाने। अब देखो अब कितने अब कछु तुम सो कछु नहा लो।
1: सही कह रहे,
0: ऐसे ही नहा लो या कछु लगा लो।
1: सही कह रहे,
0: लेकिन अपने ऊपर चादर तो चढ़ गई है जो अपनी काया है या।
1: सही कह,
0: अपन मल मल के कछु धो लो।
1: हाँ।
0: या कछु काम कर लो।
1: बिल्कुल
0: जोन अपनी यह चादर है, जोन अपनी यह खाल है जा तो पुरानी।
1: हाँ कबीरदास जी बहुत अच्छी लिख रहा है बात को कि चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहे चादर बीनी, अजब जुलाहे चादर बीनी सूत कर्म की तानी।
0: देखो भैया एक एक शब्द की का कह रहे कि चादर हो गई बहुत पुरानी। अरे सोच लो मतलब जब चादर है जोन जब बहुत पुरानी हो गई सोच लो और समझ लो।
1: सही कह रहे,
0: कितने कह रहा हूँ मन घमंड में।
1: हाँ हाँ
0: कविता में उनने कितनी अच्छी हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी अब सोच समझ ओ भगवान।
1: सही है,
0: ये जो मन है जो भाव अपनी भावनाएं हैं जा इनके दिमाग और अंदर तो सोचो।
1: सही कह रहा,
0: जा अंदर तो सोचो कि अजब जुलाए चादर भी नहीं।
1: हाँ।
0: अरे खो गई तुमने आओ में ताओ में और जैसे कछु बनो तो तुमने उस चादर का अपने हासिल कर ले, कर ले के नहीं लेकिन सूत कर्म की तानी। जैसे उनने तकली जब सूत काटत है तो काट काट में बिलाग हो जाता।
1: हाँ।
0: एक एक सूत सूत कर करके जैसे अपन ने कहा बूंद बूंद से।
1: हाँ भाई सही कह रहा, इसे और आगे लिख रहे सुरति नृत्य, सुरति नृत्य को भरना दीना तब सबके मन माही।
0: देखो
1: हाँ
0: जब सुरत है अपनी जब जिज्ञासा है।
1: हाँ,
0: तो मन है।
1: सही कह रहे,
0: अरे इमें तो भरो कछु।
1: सही कह रहे,
0: ऐसी भरो के जो सबके मन को भावे।
1: हाँ
0: जो सबके मनमानी ऐसो तो नहीं है के तब सबके मनमानी। अरे ऐसा काम करें कि सबके मन में और मनमानी ऐसा तो ना करो कि तुम स्वयं अपनी इच्छा का और स्वयं अपनो भंडार कर रहे जो कछु कर रहे जो हमन कर रहे।
1: हाँ
0: जो तुम्हें अरे जो सबे अच्छो लगे वो काम खा।
1: सही अच्छे करो
0: दे रहे उपदेश दे रहे कि वो काम खा अपन करने हैं।
1: और का लिख रहे आगे कि मेले दाग पड़े पापन के।
0: काहे भैया जे बात है मेले दाग पड़े पापन के।
1: हाँ
0: विसरन में लिपटानो।
1: हाँ विसरन में लिपटानो।
0: अरे जो जो, जो कर्तव्य हो गए जो कल है।
1: हाँ।
0: तो दाग लगाई गए।
1: बिल्कुल
0: और तुम जो काम करे आए तो उनमें तो तुम लिपटे ही हो।

0: कहा ना जानो कि हमने बढ़िया काम करके या खाके तुमने वो मुंह पोंछ लाओ तो हम हमारे भीतरे का छूने नहीं। लेकिन जो कर्तव्य जो कर्म में तुमने कल लाओ तो उमे तो तुम लिपट ही जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आगे का लिख रहे कि ज्ञान का सावन लाए ना धोया, ज्ञान को सावन लाए ना धोया, संत संगति के पानी है। हाँ, और भाई भई खराब अब गहसारी, भई खराब
0: आब गई सारी। देखो भई खराब आब गई सारी और लाभ मोर में सानी। अरे बीच क्या कह रहे, क्या बातों अगर जो तुमने सोच ली तो वो जो समय कर गया तो खराब हो गई।
1: हाँ,
0: तो अब जो काम कर लो तुमने उमे तो तुम सनी गए।
1: हाँ, लोभ मोह में सानी,
0: जो जो लोभ मोह में तुम सन गए, जो जो चीज तुम्हारे दिमाग में वो हाँ। तो तुम सन गए, अब कुछ नहीं हो।
1: और ऐसे ही उड़त उमर गमाई।
0: ए भैया जैसो तुम करो।
1: हाँ,
0: जैसो जैसो का तो उमर तो कराई दे।
1: बिल्कुल,
0: तुम्हारे ऊपर वो कहे तब चढ़ रहा।
1: बिल्कुल है, ऐसे ही औरत उम्र गमाई, भली बुरी नहीं जानी और शंका मनी जानी जिए अपने, शंका मन जानी जीने अपने, ये वस्तु बिरानी जीने जा जान ले के जा वस्तु बहुत बिरानी है। जा अपनी नैया अपन तो जितना है सो है, अपनी नैया जाका है ठीक। तो कबीरदास जी बहुत अच्छी बात लिख रहे एक हूँ के कहे कबीर यूं ही राख जतन से, कहे कबीर यूं राख जतन से नहीं फिर हाथ ना आनी, अगर जो जीवन निकर गओ फिर हाथ आवे बाओ नन्या।
0: देखो भैया काहे जी आज की कवतन में
1: बिल्कुल,
0: और आज के ई ज्ञान में कबीरदास जी ने मार्गदर्शन बहुत अच्छो दे रहा है।
1: सही बात है
0: कि ना तो भैया अपन खा जा उम्र है जो खराब करने और ना जो मोह है जो लोभ है ना ही में अपन खा, सीधी सीधी बात है ज्यादा पन्ने है।
1: बिल्कुल
0: है, और ऐसो काम नहीं करने कि जो अपनी उम्र में और अपनी जो शरीर है जो कर्तव्य है ई पे अपन खा लग जावे और नाम इसे या ला जावे या अपने ऊपर नाम कम जाएगा अरे वो फलानो भैया ऐसो है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो देखो काशीराम भैया अभी के संगे हम आपको जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपनों जावे को अब समय सो हो रहा है।
0: बिल्कुल भैया,
1: सो अपने साथियों से जो सुनवे साथी हैं उनसे कह वो चाहे कि ई कार्यक्रम में अगर जिते बात कम्बल भई होवे या फिर सदन कसाई की बात कछु और होवे और आप बात को जानत है की सदन कसाई की जा कथा ई प्रकार से है तो आप हमें जरूर बताए, कह के अपन खो उत अनुभव नैया सदन कसाई की कथा को सो जो अपने सुनवे बाय साथी है वे जरूर अपन खो बतावे।
0: भैया ई में जा बात नैया देखो गे गेरी गे उतली है।
1: हाँ,
0: अपनो काम है भैया लो जिते लो अपन जानत है।
1: हाँ, उत
0: अपन ने संदेश दे दो और जो कार्यक्रम तो यही के लाने हैं कि भैया अपन खा बताए।
1: बिल्कुल,
0: और उन भैया को अपन बातन में शामिल करें।
1: हाँ हाँ,
0: और उनकी जो कविताएं हैं जो उनके कहानियां हैं या जो किस्सा है वो अपन का भेज।
1: बिल्कुल,
0: तो भैया अपनो पतो और फोन नंबर बता दो।
1: जी हाँ काशीराम जी, भैया अपनो देखो पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा, और अपनो फोन नंबर है 9425147726। अब एक संगे अपने दोस्त माता रीम को
0: और भैया काशीराम को दो आज्ञा
1: नमस्कार।
2: एपिसोड नंबर 11 सफाई कर्मचारी। इस एपिसोड का उद्देश्य है लोक सफाई कर्मचारियों का काम, उनकी जिम्मेदारियां, मुश्किलों और परेशानियों को ठीक से समझें। सफाई कर्मचारियों को फायदेमंद योजनाओं की जानकारी दी जाए, साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें इज्जत और मान सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है सफाई कर्मचारियों का काम और उनकी समस्याएं, सरकारी योजना और कानूनी सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, पहले और बाद में पूछे गए कुछ सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय

सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? श्रोताओं, ये तीन सवाल हैं, इसके जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, इसीलिए कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए इन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलता है। ये इलाज बड़े अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन बीमा का फायदा देती है। अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीसरी योजना है। इस योजना में ऐसे मामलों में मदद की जाती है जब किसी सफाई कर्मचारी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है, अगर दुर्घटना में मौत या पूरी तरह से अपंगता हो जाती है तो 2 लाख की सहायता राशि मिलती है, अगर कुछ हद तक अपंगता होती है तो 1 लाख तक की मदद दी जाती है। स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता के गुमनाम नायक,

0: अपना पसंदीदा कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। मैं हूँ आपकी आरजे वर्षा और मेरे साथ है मेरे आरजे
1: माता दीन।
0: कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरों को भी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे माता दीन। आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ कम होती है।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, वे ना तो सूट पहनते हैं और ना ही बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन उनके बिना साफ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ना साफ सड़कें, ना ठीक से चलने वाले शौचालय और ना ही रोज की सफाई होगी।
1: आज का एपिसोड उन सफाई कर्मचारियों के बारे में है जो स्वच्छता के असली हीरो हैं। वे गलियां साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, नालियां साफ करते हैं और कई बार बहुत मुश्किल हालात में भी लगातार काम करते रहते हैं ताकि साफ, सुरक्षित और रहने लायक माहौल बना रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नाली, स्कूल परिसर या सार्वजनिक शौचालय किसने साफ किया? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
1: हाँ, उनका काम दिखता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उनके काम के साथ साथ उनकी जिंदगी और परेशानियों की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वे भी सुरक्षा, मदद और सम्मान के हकदार हैं।
0: वे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, जैसे गंदे टैंक साफ करना, जाम नालियों को खोलना, भारी मशीनें चलाना और कचरा साफ करना। इन कार्यों की वजह से उन्हें हैजा, टाइफाइड, पीलिया और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है।
1: एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से करीब 20 लाख लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं। सोचिए, अगर ये बिना मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी।
0: ये काम बहुत खतरनाक होता है। दुख की बात ये है कि ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफाई कर्मचारी कई बार कम वेतन में नौकरी की गारंटी के बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं।
1: लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने खासकर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ खास योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सम्मानित बनाना है।
0: दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय यत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अभियान यानी नमस्ते योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना दो मंत्रालयों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की साझी पहल है।
1: इसका मकसद सूखी शौचालयों, खुली नालियों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना मास्क या दस्ताने के हाथ से साफ करने की खतरनाक प्रथा को समाप्त करना है।
0: नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैक्यूम मशीन चलाना सिखाया जाता है और उन्हें मास्क, दस्ताने, जूते और सुरक्षा साधन जैसे जरूरी सामान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए बीमा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है।
1: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को बिना सुरक्षा के शिविर साफ करने को मजबूर किया जाए तो ये भारतीय कानून के हिसाब से गलत माना जाता है?
0: हाँ, मुझे पता है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में भेजना गलत है। ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
1: सही कहा, लेकिन कई जगहों पर नियम का पालन नहीं होता है। सफाई कर्मचारी को बस एक बाल्टी देकर गंदे माहौल में उतरने को मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें हैजा, पीलिया और सांस की बीमारी जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। साथ ही चोट लगने और जहरीली चीजों से नुकसान का डर भी रहता है।
0: मुझे लगता है कि उचित कदम उठाने का समय आ गया है। कानून का पालन करें और साफ सफाई का काम करने वालों को सम्मान दें।
1: और यही पंचायतों की भूमिका शुरू होती

0: है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उन्हें काम की ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए।
1: पंचायत सफाई कर्मचारियों की सूचना एक जगह जमा कर सकती है, उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र दे सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ सकती है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर योग्य परिवार को अस्पताल में इलाज के लिए साल भर में 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत ऑफिस जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होता है। पंचायत उन्हें ई हॉस्पिटल आईडी बनवाने और क्लेम की प्रक्रिया समझाने में मदद भी करती है। इस तरह अगर परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती है।
1: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण यानी PMAY जी की ये योजनाएं लोगों को पक्के घर बनवाने में मदद करती हैं। इसके तहत उन्हें जरूरी सुविधाएं वाले घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया आसान है। वे अपने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाएं, वहां उनके आधार कार्ड और जमीन के कागज देखे जाएंगे, फिर पंचायत उनका आवेदन करेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मौत होने पर 2 लाख का कवर देती है। ये योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कम सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। सालाना प्रीमियम ₹436 प्रति व्यक्ति है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए अचानक मौत या अपंगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। ये योजना प्रति व्यक्ति ₹20 प्रति वर्ष के सस्ते सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
0: देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं जिसका वे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आवेदन करने का तरीका पता नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए। अगर आप सफाई के काम में लगे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें जरूर अपनी पंचायत से बात करने और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कहें। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
1: हाँ, ये उनके लिए बहुत काम की बात होगी। पंचायत को समय समय पर ऐसे कैंप भी लगाने चाहिए जहाँ सफाई कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए।
0: ये बहुत काम की बात होगी। ये भी ना भूलें कि हर कर्मचारी को काम की जगह पर PPI किट, साफ शौचालय, पीने का पानी और फर्स्ट एड की सुरक्षा मिलनी चाहिए।
1: एक और जरूरी बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत से जुड़े कैंप का आयोजन होना चाहिए। वे अक्सर खतरनाक चीजें जैसे संपर्क में आते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनकी डॉक्टर से जांच कराएं, समय समय पर टीके लगवाएं और लगातार मदद देते रहें।
0: प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा औजारों के इस्तेमाल, मशीन चलाने और डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फायदे ऑनलाइन देख सकें।
1: ये सब तो समझ में आती है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
0: बताओ क्या बात है?
1: मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सफाई कर्मचारियों के नाम जानते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं, और क्या हम उनके लोगों को धन्यवाद कहते हैं जो हमारी गलियां, नालियां, शौचालय और सड़कें रोज साफ करते हैं।
0: शायद ही कभी, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सफाई दिवस पर ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल के कार्यक्रमों में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए। उनके काम के लिए उन्हें इज्जत, मान सम्मान और पहचान मिले।
1: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। महीने का सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी जैसा बेज भी किसी को गर्व महसूस करा सकता है।
0: ये कोई दान नहीं बल्कि इज्जत है। ये तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हमें अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान भरा काम करने का माहौल बनाना होगा। जैसे बाकी काम होते हैं, वैसे ही सफाई भी एक काम है।
1: तो श्रोताओं।

0: आज के इस एपिसोड में हम हर सफाई कर्मचारी, चाहे वो अब काम कर रहे हों या पहले करते थे, को सलाम करते हैं। उन्होंने चुपचाप मेहनत की है, गलियां साफ की हैं, नालियां खोली हैं, हमारी जिंदगी को साफ और सेहतमंद बनाया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें पानी, चाय या कुछ खाना दें, और सबसे जरूरी बात है उन्हें सम्मान दें। उनका काम इज्जत के काबिल है।
1: सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले पीपीआई किट पहनना भले ही थोड़ा असहज लगे, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। दस्ताने, जूते और मास्क आपको खतरनाक बीमारियां और जहरीले गैसों से बचाते हैं। हर बार जब आप इन सुरक्षात्मक चीजों को पहचानना भूल जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने परिवार की सेहत को भी खतरे में डालते हैं। आपके कपड़ों पर लगे कीटाणु आपके बच्चों और जीवन साथी को भी बीमार कर सकते हैं। और हाँ, एक तय समय के बाद पीपीआई किट बदलना बहुत जरूरी होता है, इसे साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्यारे श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए, ये कभी मत भूलिए कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं वो भी पूरे गर्व के साथ जीने के हकदार हैं।
2: आइए स्वच्छ भारत का निर्माण सिर्फ साफ सड़कों से नहीं बल्कि साफ दिलों से भी करें।
1: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम एपिसोड 11 यही समाप्त होता है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा हमारे नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 1219207749। श्रोताओं, जो सवाल हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूछे थे आपसे, एक बार फिर से उन कार्यक्रमों को यानी उन सवालों को हम दोहरा देते हैं। तो सवाल नंबर एक है, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपने यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप करिए इन तीनों सवालों के जवाब हाँ या नहीं में। आज के इस कार्यक्रम से जाने का होता है हमारा समय और हम चलते हैं, फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे हैं और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही मतलब काया तुम बात कर रहे थे अपने साथ
1: नहीं नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काय से हम कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ, वो तुम आओ
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचत हैंगे हाँ। के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: हाँ, और हमें मतलब जो है नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई की बात को तुम्हें बुरा लगो हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटने लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती है जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछते हैं कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी अब जैसे हम हुए कामयाब कार्यक्रम हम तो होंगे ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते आप इतनो ज्ञान जब बोलत हेंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम का नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करने जा रहे हैंगे
0: हाँ।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचात होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था जी चीज इनको सीखने में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देने है वो तो नौकरियों में ये चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन
0: वाह लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं
0: हमारे फोन बता दो
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बेकार सलाह दे रही हूँ सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बतावो चाहते हैं
0: फोन तो उठा लो पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन हम अपने साथियों को बतावो चाहते हैं कि व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहे हैं
0: अब फोन कटेगा आप काय में से उठा रहे हैं
1: चलो हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं चलो उनसे बतकावन कर लेते हैं तो उनके अनुभव से आना कराते हैं
0: बात तो हम ही करें आप खोना करेंगे
1: चलो आप ही कर लो रूपा जी का फोन है आप ही बात
0: हेलो नमस्ते
2: रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आए हैं टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए हैं तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं
2: हाँ।
0: तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या
2: हाँ जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रतिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा वहाँ से फिर हम गांव में आ गए रानीपुरा गांव में वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
0: जी तो रूपा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके लिए आपको क्या क्या करना

0: इसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
1: हाँ वैसे गांव गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से,
0: जी
1: उनसे हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: जी तो आपने जब अप्लाई किया था वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
1: नहीं फ्री में सीखा।
0: अच्छा कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
1: नहीं।
0: अच्छा तो रूपा जी आप इससे पहले सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
1: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही खाली घर में।
0: अच्छा तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर न जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर न कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा जिसको कहते हैं कैसे हो जाता है?
1: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
1: हाँ सर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी। बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी तो, ऐसे पुराने फीस थी ना उन्होंने सिलाए, जैसे पैंट थे शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए?
1: हाँ,
0: कपड़े?
1: हाँ तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो, और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़के?
1: 10-12 महिलाएं हैं साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे तो, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने दो पैसे गांव के भी बचे और दो पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया तो क्या क्या परेशानी आपको आई, क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है?
1: परेशानी तो आती है वैसे भी।
0: जी तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिल के, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती है,
0: जी
1: उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर

0: कॉलेज के बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
1: जी जी,
0: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
0: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि ये चीज क्या है
1: जी,
0: तो हमें जानकारी हुई।
1: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
0: नहीं नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया
1: जी,
0: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने एक महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
1: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
0: हाँ, वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
1: ये चीजें आप बना लेती हैं?
0: हाँ, ये 2-3 चीजें बना लेते हैं।
1: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
0: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
1: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
0: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे। तो हम सोच रहे आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
0: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बरसती जी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे, अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो मैं
1: जी,
0: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
1: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं, बस ये बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सकें, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के।
1: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती है,
0: सकते हैं। लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है, तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारे साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाए ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
0: कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए सोच रही है। लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, यहीं की यहीं रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक

0: कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती है, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहें, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहें, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं, लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल रूपा जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
0: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दे, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छी बात, धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: कहावत साहब, तुम तो इतनी नोनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें दिखा पहले से बिल्कुल पतो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हाँ,
2: हम सोचते ही रहते हम में आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके, कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे शुरुआत कर रहे, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़त है, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़त है। ये सारी बात जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उन्हें कैसे कैसे एक एक सीढ़ी को रख के आज आगे बढ़ गई हैं, और उन्हें किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही। वाह, धन्यवाद।
0: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहते सुनी कि अरे वो तो जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी सुबह वो होते है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो RCT सेंटर चला थे वो उके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम करने लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है, और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरों ब्यूटी पार्लर, तीसरों उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगते है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती, हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जे मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी, अब तो नक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोग गीत सुनन दो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान देत चली जाओगी।

0: हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
1: हाँ, मतलब तुम तो मैं बोलंदो सो कछु नहीं है, नहीं, तुम बोला
0: अपन एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैं और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सो गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथी रहो फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा था वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम ही दे सका थोगे, कहे गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे साथी, हमको बस पूछ वो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे, कैसे है? जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसो मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे, तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सएप करें या फिर फेसबुक पे भी हम वो रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में, और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा होगा कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा होगा कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो उनके लाने हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ। और
1: ऐप हमारे श्रोता साथी के पास
0: जानत है?
1: नहीं नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुँच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहाँ पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहाँ भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड को लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखो डाउनलोड करो और चाहे इतने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया में बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखो सुन सकते हैं।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथी इनकी हर बार जय शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जितने चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा है कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा है, काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
0: सेवा भावी निस्वार्थ चुन,
1: सरपंच

0: सबको समझाना है, आओगे हो हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है,
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको

0: महिला आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक,
1: घर से पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत।
1: गांव में किते किते और काका मुझे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदनी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत

0: नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको
1: बिल्कुल
0: है। नियोजन आमतौर पे किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
1: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है मन में।

0: कठिनाइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं। इसमें अब जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है यह सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहाँ पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गाँव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझे चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गाँव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों को क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए ये तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की
1: सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
4: ग्राम सभा।
2: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत, और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है।

0: आपने रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो। हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है? ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम लेकिन ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, साहब हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 94-25-14-17-26। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं। झंडा तिरंगा हाथ में लेके

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जुड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज्यादा बरसात को हो गई हैगी, ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथी ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जरूरत हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो। और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख देखो और सुन देखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयागी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रहते वो और खेती भी रहेगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैं, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है वो और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहते हैं काफी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकता है वो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जासे पहले अपन एक नजर डाल लेते हैं मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथ है वो, मौसम हमारे लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संगे हैं वर्षा, तो वो मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई किलाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे वाले रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मेनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों आवे वाले 3 से 4 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्के से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाए रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाए रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियों में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संदेह में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी होवे तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इन्हें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई, यदि दिखे तो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवे। बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियों में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखबे की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करबे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 ईसी 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो। इके नियंत्रण हेतु क्लोनोफॉस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो। सो साथियों इके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनकोजेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे, संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों आप सब जने सुन रहे थे जानकारी, मौसम आधारित जानकारी, और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
0: तो साथियों अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

मेरी गोल्ड फार्मिंग। गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हो। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौध रोपण करना चाहिए और

0: तरीके से कैसे आप गेंदे की, मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद और उर्वरक की मात्रा, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरी गोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाई, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुराई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेंगे, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पर जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शन जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किसान भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस, तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा का दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 तप्ते में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूँ। एक एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, 43,560। लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए, और 750 से 1 किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया वो वाली है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़ यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था, वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो, तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, अल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फूटन की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटन रहा, ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो 1 माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो है आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसकी वजह वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फर्टिलाइजर वगैरह में, कुछ ना करो

0: सिंपल पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो और उसके साथ में थोड़ा सा पहले डीएपी डाल दो आधी बैग और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। दो वेरायटी अलग अलग करो, दो तीन टप्पे में करो तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है। और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 भी टन 30-40 रुपए किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2 से 3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल उस पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इल्ली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45 से 60 दिनों में हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है तो वहाँ इल्लियां
1: इसको ले सकते हैं। और व्यावसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपनी मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक कुछ सालों तक कम होगा लेकिन उसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लें। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, दिन न करत भाई अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं भोले राम कुशभाजी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत हैं भजन को।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवा जी के गाय भाई भजन खो। अब आओ सुनत है फिर से इन्हीं के गाय भाई भजन खो। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

जा बिजनार सतावे के मैया मुए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुनवे को जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गायब है स्वर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत।

हमारी मोहन की।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजा मेरे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीका से ये गीत को गा के सुनाओ है। अब ये गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोलेराम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

तरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उमर मोरी बारी। देखो कितनो प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुना है, इमे अपन सब जन ने सुनो है ये, और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जाबे को समय हो रहा है, सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।